0: Assalamu alaikum. Good afternoon. Khush aamdeed. Welcome. GINU Northern Territory. Aap sun rahe hain Siddhara, the Urdu language show. Your ultimate cultural escape right here on ACCC 102.1 FM. Main hoon aapka host Shahab Siddiq. Aap sun rahe hain Alice Springs se, Darwin se, Tennant Creek se, ya duniya ke kisi kisi kone pe bhi online on ACCC.com.au. आज आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट वीक का स्पेशल इंडिपेंडेंस का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच. तो पहली रिकॉर्डिंग है पाकिस्तान टीम के कैप्टन इब्तिहाज भाई, वो हमारा शो आज शुरू करेंगे.
1: इब्तिहाज भाई, हम आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच खेलने आए हैं, तो आप हमारी टीम पाकिस्तान के कैप्टन हैं, बताएं भाई क्या हाल चाल है.
2: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. यस, आज हम इंडिपेंडेंस कप खेल रहे हैं. यूजुअली हम एवरी ईयर खेलते हैं, लास्ट ईयर मिस हो गया था, दिस ईयर वी आर गोइंग अगेन. अभी यहाँ पे कम्युनिटी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान की, और लड़के भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो वी हैव अ गुड टीम. इट्स अ वेरी फ्रेंडली गेम. आर्च राइवल्स है दोनों, पाकिस्तान इंडिया, ऑलवेज ऑन द क्रिकेट फील्ड, सो इट्स ऑलवेज अ फन डे एंड अ फन इवेंट टू इन्जॉय. अभी थोड़ी बारिश हो रही है एंड होपफुली इट स्टॉप्स एंड वी गेट गोइंग विद द गेम. Very excited for this, and I'm sure everyone else is. That's pretty much it.
1: Yeah, it's drawing out the crowd. Sab aaye hain barish mein bhi dekhne ke liye aur khelne ke liye bhi. Toss ho chuki hai.
2: Yes, the crowd, everyone is very excited, even in the communities, both from both sides, from Indian side and from Pakistani side. We had some good sponsorships this year, which is a really good part of ke puri jo Alice Springs ki society hai, wo usko kind of it bucks it, backs it up. टॉस हो चुका है, वी वॉन द टॉस एंड वी डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो वी थॉट क्योंकि हमारे बॉलर्स जो है पाकिस्तानी बॉलर ऑलवेज गुड फॉर स्विंग एंड वी एक्सपेक्ट द सेम हियर टुडे एज वेल, सो वी विल सी कि थोड़ी सी बारिश रुकती है तो वी विल गेट ऑन द फील्ड एंड इंशाल्लाह वी विल विन टुडे.
1: इंशाल्लाह वी गोना टॉप इट टुडे. यू गॉट एनी नेम्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर टुडे? कौन कौन है आपके आपके प्लेयर दो देखने चाहिए हमें?
2: So we have some veterans here, and then we have some new players who have got recently moved to the to this town and who are now part of the team. In veterans, obviously Imran is one of the guy who would always be someone you would look out for. Then in the new guys, we have Shwebi, who's a really good bowler, Shahnawaz, who has done splendid in the last cricket season. So pretty much everyone. Yeah, we have Waheed Bhai, who has been here for a very long time in this town. So pretty much, yeah, for in batting side, I would say keep an eye on Aves. Once he hit it all the way to the outside the park. So, yeah, I think we have a pretty loaded team. Sab jo hai ek dusre se badke achhe khiladi hai.
1: Yeah, it will be a good match. Good luck. Aur phir game ke darmiyan bhi aur baat karenge. Good luck.
2: Thank you very much, Dr. Sir. Thank you.

0: जी भाई, यस, बारिश अभी जैसे जैसे मतलब दिन की आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग और आएंगे, होपफुली मैच हो जाए। अगर मैच हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा, दोनों तरफ से क्राउड होगा, चीयर अप होगा दोनों टीमों में, देन वी गोना शेयर अ फील्ड टुगेदर, दिस इज ऑनर फॉर बोथ टीम्स एंड होपफुली वी विल प्ले टुडे, अदरवाइज tomorrow is our reserve day, so we will play tomorrow
1: and we'll see what the weather has to show. You've got some exciting players who who've shown a lot of skill even in the winter comp and the regular comp during the years as well. You got any names that we need to look out for?
0: Yes, like in our batting we have Sunny. He's like a hitter, he's performing from last 2 years with our team, and then Ajay, he's one of our hard hitter as well. Then we have Ritesh, like one of our key player. He have class and all the skills. And in a bowling part, we have Gurpant. He's one of our main key bowler. Then we have two spinners, Jitinder and Sukhminder Chaudhary. So yeah, we have a strong team.
1: Definitely strong team, exciting players, और बहुत मज़ा आएगा. तो बहुत शुक्रिया आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और सबको बुलाया. तो आज के लिए जस्ट एक रिकग्निशन होगी हमारी रिलेशनशिप की, हिस्ट्री की और दोस्ती की.
0: जी सर जी, नहीं, थैंक यू आप सबका आने के लिए. ये तो बहुत अच्छा डे है कि हम सब इकट्ठा फिर से खेलेंगे सब कुछ फिर से. Hopefully everything will be good.
1: Very good. तो फिर गेम में फिर और बात करेंगे, मैच में दौरान भी. तो और कुछ बोलना हुआ तो जरूर आना बोलने के लिए, और फिर गुड लक टुडे.
0: जी, थैंक यू. थैंक्स.

0: So we had a really good first day on the Saturday last weekend. लेकिन बहुत तेजी से बारिश होने लगी थी तो पहला दिन कोल्ड ऑफ हो गया था तो इनिंग्स के ब्रेक में हमने दो तीन इंटरव्यू लिए थे तो चले आए सुनते हैं
1: जतिन भाई
2: yes.
1: बारिश हो गई है
2: जी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अनएक्सपेक्टेड था हम खेलने के लिए तो रेडी हैं लेकिन इक्विपमेंट गीली हो रही है
1: कैसा कैसा लग रहा है वहाँ पे पिच पे कैसी गेम है
2: गेम अच्छी जा रही थी सो फार सो गुड कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर हो गया 8 over 47-48 सो एवरीथिंग गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू अवर प्लान बट इट्स ऑल गुड बट द रेन इज़ टू हैवी एट द मोमेंट सो वी जस्ट वेट एंड वॉच लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन नेक्स्ट 10 to 20 minutes एंड वी कैरी ऑन
1: ठीक है अब तो मुश्किल ही लग रहा है बारिश बहुत तेज़ आ रही है
2: जी वही वही वही वही चक्कर है कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और किसी को बॉल लग भी सकती है ये एक एक फ्रेंडली मैच है दोनों नेशंस के बीच में इसमें कोई कंपटीशन वाली तो बात नहीं है तो फॉर द सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स वी वेट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स देन वी विल फिगर इट आउट
1: ठीक है भाई थैंक यू भाई
2: ठीक है डॉक्टर साहब थैंक यू
1: शाहनवाज भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने कैसे थे कंडीशन पिच पे
3: पिच ओवरऑल ड्राई थी कंडीशंस और बॉल भी न्यू बॉल मूव हो रहा था बट जो आउटफील्ड थी वो थोड़ा वेट था जिसकी वजह से थोड़ा हमें बॉल को ड्राई करना पड़ रहा था बार बार बट ओवरऑल देर वॉज नो मतलब कि पिच स्लिप नहीं हो रहा था बॉल ग्रिप कर रहा था और सीम भी हो रहा था
1: अभी तो स्कोर हुआ ऑलमोस्ट 2 for 7, 3 for 30 or 4 for 30 in 8 overs
3: for 2
1: और आपने कितने विकेट लिए
3: दोनों मैंने लिए हैं विकेट्स
1: और एक तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जो बॉल की थी उसके बारे में बताएं भाई
3: मेरा शुरू से यही था जो उनका मेन बैटर था उसके अगेंस्ट स्टांस यही था कि उसको मैंने इन स्विंग लाना है यार्क तो पहले दो बॉल मैंने किए बट वो मिडिल स्टंप से मैंने कोशिश किया लेकिन वो लेग पे वाइड चले गए और तीसरा बॉल जो किया वो फुल टॉस चला गया चौथा बॉल जो मेरा एग्जैक्ट जो मैं ट्राई कर रहा था वो सीधा इन स्विंग यार्क हुआ और वो सीधा उसके लेग स्टंप उसने उड़ा दिया
1: बहुत अच्छा आपने कंपोजर भी रखा और आपने ओवर को सही कंट्रोल रखा था बहुत अच्छी बॉलिंग की वेल डन भाई
3: थैंक यू सो मच शुक्रिया
1: ओके गगन भाई अभी हम क्रिकेट के लिए आए हैं तो आप हमें बताएं भाई ये क्रिकेट मैच क्या हो रहा है कौन खेल रहा है और स्पॉन्सरशिप के बारे में बताएं
4: ठीक है हेलो यहाँ पर आज हम खेल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे कम्युनिटी क्रिकेट और इसको हम मल्टी कल्चर कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रही है और हमारे कुछ कम्युनिटी पार्टनर्स भी हैं जैसे एलिस स्प्रिंग टाउन काउंसिल नो मोर बुलबर्थ और एलिस स्प्रिंग

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार कर शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को तू गुजार।
1: 200 साल गुजर गए, पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी, सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा, फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है, लेकिन ये मंजर